0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूसरे से कभी कभी रहते हैं हम हवा हवा।